दशैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्मको बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जड़ा, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दशैं तिहार को एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईसँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: It's 10 AM अहिले बिहानको 10 बज्यो।
1: बज्यो

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 11 AM
3: अहिले बिहानको 11 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाई सँगै
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: 7 PM अहिले साँझको 7 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईसँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 8 PM
3: अहिले रातको 8 बज्यो।

0: 5 खबर नगरपालिका 1 कुसुवा संखुवा सभा हाल मलेसिया।
1: अनिता गदाल बराइली धर्मदेवी नगरपालिका 1 तेल्लोको संखुवा सभा।
0: सुरत राई तुम्छा पौवादुमा गाउँपालिका 5 भोजपुर हाल मलेसिया।
1: जुनिता चामलिङ राई फिदिम नगरपालिका 5 सरसुला केराबारी 5 थर हाल कुबेत।
0: बिरबल तामाङ साल्पा चिलिछो गाउँपालिका 4 भोजपुर।
1: रवि पहाडी मकवानपुर गाउँपालिका 2 राई गाउँ हेटौडा हाल मलेसिया।
0: गजेन्द्र राई साल्पा चिलिछो गाउँपालिका 4 भोजपुर।
1: अर्जुन यखा धर्मदेवी नगरपालिका 2 तामाफोक संखुवा सभा।
0: समीक्षा जोशी तुम्बेवा गाउँपालिका 2 मौवा 5 थर
1: र सुमिता यखा लिम्बुखिम चैनपुर नगरपालिका 10 खराङ संखुवा सभा एवं समस्त कार्यक्रम शुभ सन्देश प्रायोजक परिवार।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 9 PM
3: अहिले रातको 9 बज्यो।